0: इज्जतदार ने भैया मैं क्यों शक कर दे तू।
1: उस सियाणा पढ़िया लिखिया बंदा समझाउंदा है उन्हां दीआं तरीफां करदी है पर ओह कहिंदा पागले तू तां तरीफां करदी है मैं कहना एक भैया ते एक अमरीकी बच्चा कितें भुल के घरे ना रखो दोवें बड़े साबू हुंदे आ इन्हां दा कोई पता नहीं वो मालिक ने दुपट्टे पाउण वाला है जे पट्टे पाउण गया चक्के खुरली च रख लैंदे आ।

0: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम मल्टी अवार्ड विनर ब्रोकर शम्मी पठल
1: वधिया रैकेट प्राइस ते कार सेल करवाउन ले कॉल करो 416-917-7763 यानी 416-917-7763।

0: ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
1: ਅੱਛਾ, ਸੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ, आज का आपका सवाल जरूर करेंगे, पर आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। रियल स्टेट मार्केट है जी, अच्छा बूम आ रहा है, मतलब तुम कितने भी गड्डी चलाने, बहुत सारे घर सोल्ड नज़र आ रहे हैं, रिपोर्ट्स दस गए प्राइस डिक्रीज हुए ने कि किमें ने, बिल्डर अग्रैसिव ने, पर मैं एक चीज़ दस दिना कि जिमें साढ़े मेरे रिलेशन चो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सर्विस के उत्ते काम कर रहा बंदा, वो दस रहा कि पिछले 3 साल च ले ऑफ मिलदियां सी, याद दिना च उन्होंने अजकल पहली बार सी पिछले 3 साल च, इस बार वह ओवर टाइम लगा रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ने लैंडस नू रेडी करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने सारी इंस्पैक्शनस एनवायरमेंटल्स डिगिंग तो पहला जो जो कुछ होना होंगे वो इंस्पैक्शन करके डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट दिता, उस तो बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होंगे। आई होप सो कि अमेरिका के नाल जी कुजमा की डील है, ट्रंप देखो कि उत्थे बोलूगा कहना होंगे चलो छोड़ो हम बड़ा कहना कहना, सो लैट सी की बोलता। तो कई बार की होंदा तुहाडे घर के अंदर ही घर का पेती लंका ढाए, लीसा रॉयट जिहड़ी मिल्टन तो मैंबर पार्लीमेंट है, मार्क कार्नी ने इनू अपनी टीम दे विच मिलाया, एक कंजरटिव आ, यह एविएशन मिनिस्टर रही है, यह एयर कैनेडा की स्ट्राइक दे विच बड़े डिफरेंट एंगल ने डील किया, जिमें कह लो भी दादागिरी टाइप, वो टाइम तो सुरखियां बहुत आई सी जो स्टीफन हार्पर प्रधानमंत्री सी, इस औरत ने पूरा जोर दिखा के एक बड़े अजीब किस्म के रवैये दे नाल जिहड़ा एयर कैनेडा की स्ट्राइक नू डील किया, यानी कि मैं कुछ शब्द ऐसे ने जिहड़े नहीं कह सकता पर इनडायरैक्टली वह होया सी, ते वो कह रही है कि जी मैक्सीको डील बना गया, मार्क कार्नी ने 24 बंदियां दी टीम च इहनू पाया सी अपने नाल, वो कहिंदी मैक्सीको नाल अमेरिका डील बना रहा, कैनेडा रह गया हैगा, ठीक है जी असीं बिक जाने आ जो जो समान साडा वो चाहुंदे ने, साडे खनिज पदार्थ, साडा पानी, साडे नैचुरल रिसोर्स, साडी लकड़, साडा तेल, असी उन्हां नूं गिरवी धर दिंदे आ, जिवें नैगरा फॉल तुसीं गिरवी धरिया होया, नैगरा फॉल च कोई भी बंदा कसीनो नहीं खोल सकदा, तुसीं चाहे $200 बिलियन इन्वैसट कर दो, एक्सकलूसिविटी राइट अमेरिका की कंपनी नूं बेचे हुए ने फॉर 100 साल लई, मैट्रो लिंक्स दे विच तुसीं कोई भी साइन बोर्ड अपना नहीं ला सकते, कोई भी तुसी टेंडर नहीं ले सकते, 100 साल लिए मेट्रोलिंक्स के जो साइन ने TTC दे बसों के उपर, ये अमेरिका की कंपनी ने CBS ने 100 साल लिए साइन कराए हुए हैं, इदा ही 100 साल लिए होर साइन कर दें, तुसी ते पीयर पॉलियर बस अपनी सियासत खेडो, मुल्क गया तेल लैन। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद लीसा रॉयट जी कि तुसी मुल्क नूं ऐसे नाजुक टाइम पर जदों स्ट्रेंथ की लोड़ हुंदी है, मैं कहना हुंदा कि लीडर हो जिहड़ा खड़े, एरनो टूल कंजरटिव लीडर रहा, जदों डोनल्ड ट्रंप पिछली बार आया सी ट्रेड दे इशू लेके फिर आया सी, उस टाइम ते एरनो टूल जिहड़ा हैगा वो नाल खड़ा सी इन्हां दे, ठीक है, एरनो टूल ने कहा सी कि साडे वल्लों सरेंडर आ, तुसी जो भी डील बनावोगे ओपोजिशन तुहाडी सपोर्ट करूगा, इट शुड बी लाइक दैट, बट राइट नाउ ऊंट किस करवट बैठदा, आने वाले दिन जिहड़े तुहानू दसणगे जी।

0: रात आ मैं छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे करदे ने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशना ने। मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रका दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरी जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: Nobel Fresh Foods शहर विच इको रोला पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच Nobel Fresh Food फेर नंबर ले गया आटा दाल चावल अले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा Nobel Fresh Foods 2945 Sandalwood Parkway East दूसरी लोकेशन 20 Gillingham Drive in Brampton फोन 289-801-0566 Nobel Fresh Foods
3: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $99 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-365-2340।
4: You're listening to Gumtaz Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: और कुछ ऐसे कोर्सेज भी है जो टीचर नहीं है जिनके अंदर, सेल्फ स्टडी वाले कोर्सेज है,
1: अच्छा,
0: अर्निंग उस पर भी उतनी आती है।
1: अपने आप ही स्टडी कर,
0: हाँ जी, आप लॉग इन करके पोर्टल में आप स्टडी कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है वो, आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं है आपके पास उसके लिए,
1: अच्छा
0: एनी टाइम आप कर सकते हैं हफ्ते में, हफ्ते में आपने 10 से 12 घंटे लगाने सर, आप
1: वो
0: तो
1: क्या
0: बड़ा
1: है
0: अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मिस ना करें।
1: वो कौन से कोर्सेज ऐसे
0: वो
1: वाले हैं ना?
0: हेल्थ केयर रिलेटेड कोर्सेज है, जैसे एक्यूपंचर हो गया ऐसे, वो लाइक फुली ऑनलाइन है और लाइक बहुत स्मूथ है वो, ज्यादातर क्लाइंट उसी में जाते हैं, तो आप
1: ठीक है,
0: इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। गवर्नमेंट 35 डेज के बाद ग्रांट्स में कट कट कट कर रही है, आज आपको 30 से 100,000 में से अगर फैमिली ऑफ फोर है 80,000 आ रहा है, 40,000 तो नॉन रिफंडेबल ग्रांट ही है, जो रेस्ट $40,000 है वो ऑप्शनल लोन है, जो कि 1.5 साल तक 0% पे, और जब 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करेंगे, आज नहीं 1.5 साल बाद, तब ब्याज क्या है 2.5% पूरे साल का, कुछ भी नहीं होता वो, अब 10 साल में लौटा सकते हैं, 14 साल में लौटा सकते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। आप अपने 5 दोस्तों को कॉल करें, 3 ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया होगा, 2 ने हमारे थ्रू लिया होगा।
1: जी। फीस फिर आपकी कितनी है?
0: फीस लाइक हमारे पास क्लाइंट्स आते कहते हैं सर पहले एजेंट ने हमारे 3500 लिया, 2500 लिया अपफ्रंट, हमारी कोई अपफ्रंट फीस है ही नहीं,
1: अच्छा,
0: काम होने के बाद जब फंडिंग मेरे अकाउंट में नहीं आती, आपके अकाउंट में गवर्नमेंट से डायरेक्ट आती है, आप आज इनरोल करते हैं, फंडिंग आपके खाते में आती है विदिन 30 to 90 days में, और तब आपने हमारी फीस देनी होती है जब आपके अकाउंट फंडिंग आती है, तो मतलब आपकी ईमानदारी चेक हो रही है, मेरी ईमानदारी चेक नहीं हो रही ना मेरी टीम की। टिम हॉर्टन्स में मिलते नहीं है जी, 1,000 square feet का ऑफिस है, 6 से 7 बंदे काम करते हैं, 7 years हो गए हैं, कोई कैच नहीं है, गवर्नमेंट जैसे बिलियन डॉलर्स इधर उधर लगाती रहती है, फीफा में गवर्नमेंट ने 1 billion लगा दिया, $1 billion, तो चलो पता नहीं, आई डोंट नो, बाकी उन्होंने 100 million की गवर्नमेंट नई फंडिंग लॉन्च करी, क्यों? देश के बाहर लोगों को फुटबॉल खिलाने के लिए, यू कैन गो टू ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा में वेबसाइट के फेसबुक पेज पे, जब गवर्नमेंट ऐसी जगह पर स्पेंड कर सकती है, गवर्नमेंट यूक्रेन को इतना पैसा दे सकती है, गवर्नमेंट एजुकेशन में स्पेंड करती है, कोई कैच नहीं है, यस कट्स आने वाले हैं एजुकेशन में, आज एनरोल करें, 30 से 100 फंडिंग करें, फैमिली ऑफ 5 को अप टू 100,000, फैमिली ऑफ 2 को अगर हस्बैंड वाइफ है रिटायर्ड है अप टू $45,000, जिसमें से $25,000 ग्रांट है, 100,000 में से $50,000 ग्रांट है, ग्रांट बंद होने वाली है, 35 दिन रह गए हैं, कॉल करें, असेसमेंट करें, हमारी फीस काम होने के बाद $199 या $499 फ्लैट फीस, वन टाइम फीस, नो कमीशन, नो परसेंटेज, जो ऑन एयर है वही ऑफ एयर है, कोई मीठी बात नहीं है, कॉल करें 437-264-31-75, डॉक्यूमेंट्स भी आपका एनओए, बर्थ सर्टिफिकेट लगता है बच्चों का, मैरिज सर्टिफिकेट, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं अपने को, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई सेटिंग अप्रोच तो है ही नहीं, गवर्नमेंट के पास आपके कागज पहले से ही है, कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, तो फीस भी कम है। नंबर 437-264-31-75, 437-264-31-75, उन्हें कॉल करो तो ऑफिस आओ, 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, नंबर नोट करें 437-264-31-75, 437-264-31-75।
1: जी सराज, थैंक यू वेरी मच। ते बिल्कुल जी, तुसी जरूर कॉल कर लो, चाहे ऑफिस चले जाओ, क्योंकि 218 एक्सपोर्ट बुलेवार्ड मिसीसागा दे विच ऑफिस है इन्हां दा, नंबर तुसी नोट कर लो एक बार फिर, क्योंकि इन्हां दी कोई अपफ्रंट फीस नहीं हैगी, जदों तुहानू ग्रांट मिल जूगी, तुहाडा डन हो जूगा काम, उदों तुसी इन्हां नू जिहड़ी इन्हां दी फीस देनी है, सो कोई हिडन चार्जिज नहीं हैगे। 437-264-3175 नंबर है, 437-264-3175 ते गलबात करनी है, 437-264-3175 ते तुसी गलबात जड़ी है वह सराश ना करो, ते वधिया वधिया करो पढ़ाई, क्योंकि पता की है जड़ी एजुकेशन है ना, वह जिमें कहते भी कोई थो तो खो नहीं सकता, अदरवाइज तो किसी भी तरह का कोई नुकसान हो जाता है ना, कोई चीज़ा चोरी करके लै जाता, लुट के लै जाता, कित दंगे हो गए या कि जिमें जंग चल रही है ना, उन्होंने घर बार समान सब कुछ खत्म हो जाता, पर जेड़ी नॉलेज किसी को हैगी है ना, वो जो मर्जी कोई कर ले है ना, वो जेड़ी नॉलेज है जेड़े थोड़े को एजुकेशन है उन्हों खो नहीं सकता, सो इस करके वध तो वध जेड़ी है एजुकेशन है वह ग्रहण करनी चाहिए है, सो जे इत्थे कनेडा बहुत वधिया थानू मौका दे रहा है तो फिर क्यों नहीं है ना, जरूर तुसी सराश नू कॉल कर लो।

0: 416-520-3535, 416-524-3535 with Vidhi Chhabra from Planet Insurance.
1: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ .ca ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ more phones more plans more choice
2: A to Z kitchen cabinet bhai wah kya kitchen cabinet taiyar karde han lucky bhaji diyan baniyan kitchen cabinet dekhe guandhi vi bohane nal tade ghar aunde han sheeshe nal bhariyan kitchen cabinet waste designer kitchen cabinet waste A to Z kitchen cabinet 416-720-7073 905-720-7073 de call kar sakde ho program punjabi virsa sun rahe ho tusi singh harjeet de nal hello
3: ससिकाल जी क्या हाल है
2: अच्छे सर आप कहाँ थे इतने दिन आपका कॉल ही नहीं आया क्या बात है नाराज
3: नहीं, नहीं मैं आपके शो के दौरान काम में मसरूफ था इसलिए बाहर आना मुश्किल था रेडियो अच्छा, नहीं सुनता अच्छा। था दूसरे और शो में मुसलसिल आता हूँ बहरहाल एक गाने की फरमाइश है तुमने पुकारा और हम चले आए
2: हाय रब्बा मेरा ये
3: आप इससे पहले बोले ना कि तुमने आवाज दी मैं आ रहा तो मैं बोला तुमने पुकारा और हम चले आए जान हथेली पर ले आए
2: यार कैसे मैं कैसे गीत बन गए हैं इसके गीत कोई कंपेयर ही नहीं है
3: इसके पीछे भाजी सिर्फ उर्दू है उर्दू जब तक रहेंगी याद रखना उनमें गहराई होंगी उनमें कविता में बड़ी जान होंगी क्योंकि मोहब्बत का इजहार जो फारसी और उर्दू में किया गया है शेर व शायरी गजल में वो किसी और जबान में नहीं मिलेंगे आप देख लीजिए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के जितने गाने हैं यानी जब से बोलती फिल्म शुरू हुई आलम आरा साइगल साहब सबसे पहले गायकार थे जिनकी आवाज दुनिया में मुतारिफ हुई मुतारिफ यानी इंट्रोडक्शन हुआ
2: जी जी।
3: फिर उनकी कॉपी मुकेश साहब मारे रफी साहब और कितने लोग उस जमाने के तलत महमूद यू नेम इट सारे लोग उनकी कॉपी करते थे साइगल साहब वो आदमी थे इनफैक्ट ही समझो आप एक दर्शन मार्ग थे वो लेकिन वो साइगल साहब के भी गाने देख लीजिए पूरे ठेठ जबरदस्त उर्दू में और गहराई इतनी गहराई कि मैं क्या बोलूं
2: क्या बात है
3: और आज भी यही अंदाज है तो ये
2: ये कैसे इसमें क्या उर्दू के लफ्ज है तुमने पुकारा और हम चले आए ये तो हिंदी के लफ्ज है तुमने पुकारा और हम
3: अच्छा ठीक है अगर आपके हिसाब से हिंदी के लफ्ज है तो चलिए यही रहने दीजिए मुझे बताइए बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ये हिंदी है ये
2: बहारों मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको इस चीज की नॉलेज ज्यादा है ना मेरे को इस चीज का पता नहीं है मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना
3: उर्दू हिंदी दोनों मिक्स है हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है वो दरअसल उर्दू जो है हिंदुस्तानी लैंग्वेज है जब इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में फॉर्म हुई तो वो लोग बोले ये कौन सी जबान है जो पूरे इंडिया में चल रही है तो बोले साहब ये उर्दू है तो बोले बस हमको ये सीखना है ये सीखेंगे तो हम हर जगह कामयाब होंगे वरना देखते हैं वो लोग बोलते हैं भाई वहाँ अगर हम साउथ में जाते हैं तो वो तमिल बोलते हैं और इधर साउथ में आए तो वो तेलुगु बोलते हैं नॉर्थ में चले जाओ पंजाबी बोलते हैं तो ये कौन सी जबान है जो पंजाब में भी चल रही आंध्रा में भी चल रही बिहार में भी चल रही तो बोले ये उर्दू है अच्छा ये सीखना है बोले तो ये कम्युनिकेशन का एक जरिया वगैरह था और जितने सुपर डुपर हिट गाने देख लीजिए आप वो सारे आपको उर्दू में मिलेंगे और जैसा जैसा उर्दू में कमी होती जा रही शायरों की जैसा जावेद अख्तर बोलते मैं अकेला हूँ शायद आज मैं कल मर जाऊंगा जाहिर है सभी मर जाएंगे लेकिन यह बात यह हो रही है कि इसको जिंदा रखने के लिए आपको चाहिए जरूर कोई ऐसा कलमदान होना जो ऐसा लिखने वाला कलमदान यानी ऐसा पेन वाला होना जो उर्दू लिखे राजेंद्र किशन देख लीजिए आप कैसे गाने लिखते थे कैसे गाने वो सबसे हाईएस्ट पेड लिरिक्स राइटर थे
2: अच्छा
3: आप आनंद बख्शी साहब को ले लीजिए जी हाँ सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में बोलते थे पाजी कि अगर आपको राजेंद्र किशन साहब से मिलना है तो रेस कोर्स महाकाली चले जाओ
2: अच्छा
3: लोग बोलते थे वहां क्यों यार बोले जो पैसे मिलते थे उनको पहले बोलते थे भाई कल कौन सी रेस है मानसून है चलो मैं जा रहा हूँ वहां बीटिंग करूंगा तो वो मानसून की रेस में मिल जाते थे तो एक मरतबा माला सिन्हा जाके उनसे पूछी कि राजेंद्र जी आपको क्या घोड़ों से प्रेरणा मिलती है बोले नहीं फिर ये शेर व शायरी कैसा करते बोले बस मेरा शौक है क्योंकि मैं पैसे कमाता हूँ ना ये घोड़े भागते मुझे बड़ा अच्छा लगता तो इसलिए मैं पैसे लगाने आया था तो हर एक की एक अपना शौक होता आनंद बख्शी साहब

मैं तुम दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू। तुम दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी वफा है तू। चाहा है तुझे, चाहा है तुझे, चाह से भी बढ़कर मेरी चाहत और चाहत की मेरी जान इंतहा है तू। पंजाबी विरसा वैद, द वन एंड ओनली मैन सिंगर जी दे। छोड़ दिया उनको जे, छोड़ दिया उनको जे कहकर तू बेवफा नहीं, छोड़ दिया उनको के वो बेवफा नहीं। बैठे थे तनहा में अकेले तो सोचा, ओ मेरी जान आपने तो वफा भी नहीं की।

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 32, 55, 80. हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
3: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 square feet दी कॉटेज सेल ते आई है 3 bedroom 2.5 washroom हन हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है 12x30 feet दा डेक है प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है पिछे पानी है अते खूबसूरत है क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा बीच भी नजदीक है जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222

0: सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देव जी।
1: बड़ी मेहरबानी है सर, तीन दिन मेले की जानकारी 1 बजे तो बाद भी चलती रहेगी। आई एम देव टाकला एंड यू आर नॉट। जशन टेंट हर तरह के टेंट लाते हैं, दिन त्यौहार कोई भी हो जशन टेंट वाले तैयार ने तुहाडे लई, चाहे हाई पीक वाले 54 वाले लवा लो, उत्तों टॉप जिहड़ा क्लीयर वाले लाने हो वह लवा लो, टेबल कुर्सियां मेज फ्लोर ते फ्लोरिंग भी लाते हैं, पोर्टेबल वाशरूम भी लाते हैं, लाइटां भी लाते हैं। जशन टेंट 416-429-2857 इन्हां दा नंबर है। ट्रिपले लैंडस्केपिंग वाले, नवा घा लवा लो, पुराना पटा लो, पुराने दरख्त पटा लो, नवे लवा लो, लैंडस्केपिंग करा लो, क्यारियां पवा लो, खीरे ला लो, गोभी ला लो, गाजरां ला लो, जेड़ा को मर्जी ला लो। नंबर एक ही है 647-784-1213, 748-1213 इन्हां दा नंबर है। हेलो हेलो
2: हेलो जी।
1: हां जी,
2: तीन दे मेले दा पुछना सी, स्टॉल बुक कराना चाहुंदा।
1: होल्ड करो।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets de pal de vich Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne ja tusi visa services de pal de vich puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड।
8: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
9: विमला विलेज विलेज पढ़ दे पीओ च जंट पढ़ दा विमला विलेज विलेज विमला विलेज विलेज पढ़ दे। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: धीरे से जिंदगी में आना, धीरे धीरे से कहा तो होना, धीरे धीरे से दिल को चलाना भी छेती देने नहीं आ सकता बंदा जिंदगी से, कोई नुकसान हो सकता है, रफ्तार घट करने की गल कर रहे हैं कि स्पीड घट रखो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे दिल को चलाना। ग्रांट कहते छेती छेती आ जाए, बाकी काम छेती छेती सारे काम। अच्छा बंदा कहना छेती छेती ब्याह हो जाए, छेती बच्चे हो जाए, छेती वह बड़े हो जाए, छेती यूनिवर्सिटी चले जाए, छेती ग्रांट आ जाए, छेती अप्लाई कर दिए, एको चीज़ है जो कहना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।
1: ऐसा है वैसे, लाइक आज अगर किसी ने अप्लाई करा है हमारे साथ,
0: थोड़े तक लिखा जाते होने
1: हमें, हमें तीन दिन में सर हमारा क्या स्टेटस है,
0: इतनी छेता पीजा नहीं होता जिनसे बंदा वीजा पाड़ता, जब वीजा भी अप्लाई किया फिर भी बंदा कहना छेती भाई आया नहीं अजे कुछ, है ना।
1: आप पहले बोलते जी 30 to 90 days लगेंगे,
0: यानी 30 to 90 दिन लगने हैं,
1: लगने हैं जी,
0: लगते हैं।
1: सीबा लोन की तरह नहीं, गवर्नमेंट पहले पैसे फेंकेगी, बाद में बोली गए गलती से भेज दी वापस,
0: गीत ला के रख लग रो फोन, धीरे धीरे से हौली हौली फोन करना। सो लो जी भाई मेन वड्डी गल यह है कि बहुत सारे लोग ने जिहड़े उन्हां नूं ये लगता हुंदा कि यार भी इन्ना सौखा नहीं है कनेडा च, खास करके जे आपां घर ते भी कोई लोन लैणा होवे, यार गड्डी दा लोन नहीं इन्ना सौखा तां मिलदा भाजी, जिवें तुसीं दस रहे हो गड्डी दा लोन लैण लई वी उह 100 डाकूमेंट मंगदे
1: आ, गड्डी दा लोन आपां गवर्नमेंट देती है
0: नहीं दिंदी,
1: तो बस फिर बात ही नहीं है ना। जब गवर्नमेंट $1 billion फीफा वर्ल्ड कप में लगा देती है,
0: अच्छा 1 billion लाया उन्होंने,
1: 1 billion 1000 million जॉब रिपोर्ट ज्यादा क्यों आई है इस बार,
0: $1 million फीफा थे,
1: जॉब रिपोर्ट्स ऊपर क्यों आई है इस बार, इन्फ्लेशन है, अगले 2 महीने में देखना कहां जाएंगी जॉब रिपोर्ट्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा फेंका तिजोरी से, बड़ी बड़ी कंपनी स्टेडियम्स को दिया, उन्होंने एम्प्लॉय करा, जॉब नंबर्स अप गए, ओके सो दैट्स अ डिफरेंट साइड। जब गवर्नमेंट लाइक अब गवर्नमेंट ने 100 million लगाया है, 100 million किस लिए लगाया है, जो देश के बाहर जो और कंट्रीज हैं उनमें छोटे बच्चे फुटबॉल खेल के फीफा में एडमिशन ले पाए, 100 million की फंडिंग गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की वेबसाइट पे जाए और चेक करें, ओके जब गवर्नमेंट इन चीजों में पैसा लगा सकती है तो गवर्नमेंट एडुकेशन में लगाती है सेम वे में, कोई कैच नहीं है इसके अंदर। और इसमें लाइक अगर आप PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, आप ओंटारियो में किसी भी सिटी में रहते चाहे नायग्रा, हैमिल्टन, बैरी, नो एज लिमिट।
0: कई बार बंदे ने ग्रांट भी ले ली, लोन भी ला लिया, बाद च ग्रांट तो वापस करनी नहीं,
1: बिल्कुल जी,
0: लोन 1.5 साल बाद वापस करना,
1: मजबूरी समझती है गवर्नमेंट,
0: हाँ 3 साल कोई नहीं देना है तुम्हें,
1: कुछ भी नहीं, लोन 3 साल के बाद स्टार्ट हुआ उनका, फिर
0: आई भी हो जाता है,
1: हो जाता है, गवर्नमेंट है
0: कर दें दिया, उन्होंने पता है यार बंदा, हाँ जो उन्होंने मजबूरी बाकी जाना पै गया, कहते होर भी जाना पै गया,
1: मजबूरी वाली बातें तो फिर समझते हैं, बैंक थोड़ी जो उठा के ले जाएगा,
0: हाँ हाँ हाँ
1: है ना, तो वो चीज़ है। तो इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, तो इसमें मेरा नहीं आपका नुकसान है, हमारा तो एक छोटी सी फीस है, आप नहीं देंगे तो कोई और दे देगा, तो इसमें लाइक 30 to 100,000 की फंडिंग हासिल करें, जिसका आधा पैसा आज की रेट में नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स ग्रांट्स ग्रांट्स है।
0: हाँ जी, लोन भी जो होंगे जो बंदे को कोई मौके पर अगला कहना यार मेरे को हम 4 पैसे है ठीक है, कम सही हो गया है ना, 3 साल बाद 4 साल बाद यार मैं कोई होर कोई लोन लेना या कुछ होर करना, जब मैं मॉर्गेज लेनी या कुछ भी करना, भी इन्हें मैं पे ऑफ कर देना, जब गड्डिया का कई बार ओपन लोन कह देना,
1: ओपन है
0: पर ओपन है,
1: बिल्कुल ओपन है, मैंने अपना खुद का 3 साल में पे कर दिया था,
0: जो तो मर्जी पे कर दो,
1: राइट 3 साल में पैसे इकट्ठे हो
0: गए, 20,000 चाहे 20,000 की किस्त बना लो, चाहे 20,000 तुम वन टाइम ही पे करो,
1: यस सही में,
0: कोई पेनल्टी नहीं है,
1: पेनल्टी नहीं है इस पे,
0: अच्छा
1: गवर्नमेंट
0: कोई तो नहीं, जब मॉर्गेज पहला कहने के जो पहला पे करनी चाहते तो जो कटाने चाहते हैं या कुछ कही है, वो 3 महीने का इंटरेस्ट रेट पैजू या कुछ, यह कुछ नहीं है
1: इसमें, नहीं इसमें एक और बड़ी चीज है बताऊं, अगर हमें डीप जाना है,
0: हाँ थोड़ा डीप चलो,
1: हाँ चलो बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल चीज पे चलते हैं,
0: हाँ चलो,
1: मेरे घर की किस्त है $2500,
0: हाँ
1: जब मैंने घर लिया था तो उसमें से $1500 ब्याज था, 1000 toward प्रिंसिपल था,
0: अच्छा
1: समझे, 2500 किस्त में से
0: 1000 प्रिंसिपल उतरता था, 1500 ब्याज ही जाता था।
1: अब आप इधर आ जाओ इस वाले लोन पे,
0: अच्छा
1: 17000 का लोन है, 162 की किस्त है, $22 इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि सारा पैसा इंटरेस्ट में जाएगा पहले,
0: प्रिंसिपल
1: ऐसा मॉर्गेज में होता है सारा पैसा इंटरेस्ट में जाता है,
0: हां जाते
1: पहले शुरू में इंटरेस्ट में जाता, प्रिंसिपल में कम, यहां पे डे 1 से प्रिंसिपल में ही ज्यादा पैसा जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है और फ्लैट चलता है, मतलब $22 ब्याज हर महीने का एवरी मंथ सेम फॉर 10 इयर्स। यहाँ पे कैसा है, पहले चूस लेते हैं मोर्टगेज वाले बैंक्स पूरे बंदे को 10-15 साल, फिर बाद में प्रिंसिपल में ज्यादा पैसा जाता है, राइट। इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप लाइक स्किल हासिल कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट सीखें, 30 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें, आधा पैसा तो नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, कॉल करें, हमारी फीस काम होने के बाद कितनी है जी, नो परसेंटेज, नो कमीशन, नो कैश,
0: $199
1: मुझे आज 6 ट्रैक आया है, सबने 200 भेजे हैं 199 की जगह।
0: अच्छा,
1: $1 लोग ज्यादा दे ही देते, खुद से ज्यादा दे देते हैं।
0: हाँ,
1: हम मांगते नहीं है।
0: हाँ, वो कहते बद लो जी, तुझे देखो बद कहना देंगे $200 जरा। अच्छा, कहते 6 इंट्रैक्ट आ गए, बढ़िया जो
1: सारा बाकी 199 देते, सब 200 ले जाओ।
0: सो भाजी हमने तुम कॉल कर लो, इन्हों की टीम है जी तत्पर लगी हुई है, क्योंकि जे मैं तुम दसा कि नाल दी नाल कोर्स है जो भरी जा रहे हैं, जो इन्होंने कोर्स भर के तुम कहना भाजी तुम एडवरटाइजमेंट करते तो है हो, तो अलग अलग थावे इन्होंने चलती है, पर भी सू तो कहते हम थोड़ी सीट ही है नहीं, इन्होंने कहना कोई कोर्स
1: ਗੱਲਬਾਤ
0: ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੁੜੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ।